आकाशवाणी इम्फाल नसी इंगागी तरा निपान बा युम सकई शनुमेद सकाप तलिसिंग मचामा पन निफुनी पान जुन गी तांग कुनमरी इंग्लिशिंग निकुंतरोग हौजे अयुकी पुंग मंगा मखाई ताकी बगा लुनेना संगाई चैनल गी थौरम परें संदोक पा हौजरी संदोक चरी बा मेगाहर्षा महुम दस्मिक मंगा दनी अंगन बा अयुक असीदा थौरम ताबिरी बा ख्वाई पुम नमक पु तराम नोक चरी इकोक नोन खुरुम चरी

हे इमा मालेम द तोमटिन गालिबी चिंगलोन मापल नपलोन खारिबी इरो नुंदगी हौरकबी खुरुमजरी तोलबन जाय खोइना

सक्षगे छोंजगे नगुंतबो मपोक मपोक खुदिंडा पापसे लबा थवाई से फंगन भी उसंजबा नखुयादा।

ise si tahan jeki bagalune na ngasi ki damak ta di yakai rol sanduk chaba matanga si dalu jere ngasi ki yakai rol da lokho chaki ba sekshak pasing amadi sering ki pasing di matang shit na ahan be sai da live stream le bang mazana chak pa pena yakai rol ani subada ललित कला संगम की शिक्षक पसंग न सक पाई माले बाग पुखरुम जब इसे सेरिंग बा बी जयंत कुमार शर्मा अहम सुबदा सूर्ती संगम की शिक्षक पसंग न सक पलाई शोली शे सेरिंग बा हुइड्रोम भोरोड मरी सुबदा कौंसिल आर्टिस्ट यूनियन की शिक्षक पसंग न सक पा ओइनाम चंद्रमणि ने सेरिंग बलाई शोली शे अमदी मरी सुबारोई बदा तहन जखरी बैसे इरम दम शिक्षक लोप की शिक्षक पसंग न सक पा ले बाग निंग बैसे सेरिंग बा रतन कुमार लुटोंग बम अदोमन थोरम ताबिरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल देखनी।

0: cha tong tin chi bu kai daw ra bono ne na han kai ga iman mana de nung shu ung sha na na ui da
1: kai daw bo yaw ra ge ne ma ma nang na du da na tom ta murum son de lai di bo ai ngon de su khang lu da na
0: ma khoi pa bung di u bi dra bo i tom ta na u ra bro i cha tom tin gi ma wong ma taw si bo
1: ai su nang ga ta na ge khalam li bani ne nang na muk ta hang bi u da na kai daw re ka na ga kari hai na ru re kari pami nuai ta bo kari lai bi ge hai bi do isa si sa ba thak pa smu pung ni chang chang da gum tawi ne isa bu kum ne ying sin ba hai ba se ma ma ma pa wai ba khoi gi ta ngai pha dra ba i thau ni ne
0: ma khoi ba bung ai ha jik ta ning sing la e ma na hai ri du bu a tai subject ti ya ra ni physics ki oja a pha ba ma tang ti bi u hai ba ni ai di khok thok lu re da na
1: he ra a du gi wai re ai gi iman ba gi ma sa nu pa la ri ai kra ba ma le mi ne su ne ma bu to so na ri ba ni अफब थबक दिने ngai bahuna di ngasimak mayum da salage hekta unaru loge pause nang nei cha tum tin da sukhra hayu ko
0: nu ngai jare da ichan harau jare ni ado mui pabung ai khoi gi yum da oina lak na ba haibiramo changning ba sel changja sanu pamu de icha gi damak tane
2: asumna mapa mama oiba singna machabu करीदा सोई खिगदगी हाइना कुपना यिंगसिन बिरबदी मेकोक थोंगबा हाइबदु ओइगदौरिबनी महै तंबा चलहलिबनी दो हाइदुना पंगचत चलहनबा आंगांगदुना करी तौरी करी पामी हाइबदो खंगदोक पतंगाई फदी
3: आंगांग सिंगी आहानबा स्कूलदी युमने ममा मपाना आहानबा ओजानी वाफमसी कपनिङाई लैतना चुमलबा वाफमने
2: आंगांगना मबुक लामलकपा मसादु चोटपा नुंगाइतब मवोंग लाकपदा कप्पी मदुदा ममा ओइबिसिंगना नुसीना इमाला ए हाइना मचागी मनाक त सेनसिनदुना मचाबु मथानुंगदा नुसीना कोनबी मदुतदा आंगांगदु कप्पतोई इमा हाइबवाहिसी आंगांगे नाकोंगदा तोइना ताबदगी मा हाइबवाहिसी हाना खंगबंगमी
3: ममा मपा अनीदगी लोन खंगब हौरई अकोइबदा लैबा पोचिंग मसक खंगलई चाउरकपगी मतुंग इन्ना मामा मपाना पोट अम उतलगा पोट ममिंग ताकपा तंबीबा हौई कुदम खरा पल्लबदा हैनौ सेम अंगूर कोमला पिजबदा मसी करिनो एप्पल सीना मेंगो हैनौ असुमना तंबी चही मतांग येंगलगा मामा लोनगी सैरेंग थीबा नुंगाइबा सुरदा इंग्लिश की सैरेंग सखमिननै नुकमिननै हराउमिननै नुंगाइबगी इपाक्त तौमिननै सेलन लैब फंगनरोइदब नुंगाइबनी
2: स्कूलदा ट्यूशनदता इनथोपा चुमलोय मचाना महैतंबदा

सना तुम्बी दे बिने सकपा जानदम श्यामा चरण ने छेरिंग मतमी से मताबिरे अदोम न थोनम ताबिरे बसी मेघर शाह मोहम्मद दसमी मंगागी एफएम सांगाई चैनल देगी आकाशवाणी इम्फाल हौजे मिकुप खरा की मतुंग दा सिलोंग देगी रिले दा अवांग नोंपो की ओइबा पाउ ताबिरसी

0: इनमा ऑटो भरा दो इन पिजरम लमनी को आई संगे संगे यम दे वा थोमनी कैन हेमा मखोय ता मो नत्रो
1: मानी ने आई वो मौसा जिन बिओ इन उरो ब्रो ngasai दिगे आंगांग से पोरि ने आई छिरमनी ने
0: आई सुने पागला कया द न तौरी ने आई मामाला ए से
1: लो आंगांग का जे ngam दे
0: जे तुम लब्र कैन मखोय ता मो पोसि चंग त पुसन
1: बि आई से ngasai दिगे ने आंगांग से पोरि ने नंग ने एंगोन ने पाकोन छि पपा मे से पांग खबा लुमिने सिबो करी यारि पोनो ने सिबो ngasibo पोसि खरा फरक पडे ने नंग बो
0: ओ संधाया संग बद खरा सिले अदुना थेंगिनी इमाय बेमा कथे नुपी सिंगसे अमोंग तोय बलाय यावि काइनो मय
1: कारियो मुक टाउन नराबा कारियो मुक टाउन नराबा
0: पोसु सिते सलगे हाइदना ने फि योम सिन नबा कन्न लांगनरिंगे पाखंग मसक मतो फजा खराबा चोंग फिरान जाबा खरा लायेबा
1: खांगे मुलाय थादल सुने पाखंग खरा लाय कोखता हायु कान दे नंग
0: ओ पाखंग सिंग अदुना ने आइगि फि सिंग दो ममन कयानो लायरगे नंगांगनरिंगे
1: अरे नंग कर हाय करे
0: हा करिनो मनिंगि साउबिना ने कला खदना माइको तो वइन लायु मागि दुना फजाबे हेली खाबजु हेली काइदना ने मखुलो मसाव
1: तौनी मदुनु दो तौनी ये मदो मदुनु दो लाछगोन मानबि दो तौनी ये आइ खांगे
0: मादिबा आइगि फि दो लैखरगनि हायदना ने पाखनन खि
1: मा
0: खांगसिंग अदुगी खुदांग दो ता पाइदना चिंगे तौरिनि ने मय तामो
1: पाखांगसि करि हाय मगोन दे दिया हा
0: ओ पाखांगसिंग अदुना दिने आइगी फिसिंग दो पाम दुना चांगलक लबनि ना ने चावबिना हाय बदु यादरे
1: मा खाताव
0: ओ आतम नने लाग पनि ना न हा पाखांगसिंग अदुना ने आइगी फिसिंग दो ममन ताव गान हायरम द्रे आइन हुन ब ममन दु दने हा थमंग लाइ करबनि
1: फे
0: मखोय तामो लुगा गासिद इजल लैन लैबा मिसिंसु याम लैन जानिको
1: लै लै लै
0: पाखंग सिंग अदु सुने फिल्म मस्ता गा माला दना खुफा जमा
1: नंग ने फिल्म गी हीरोइन मा बब दु दचंग ई वरिनि ने सलाम बी आइन ने पिपम जे खदंग फरम बी बी मन नंग खैदेन छे फमन मोय दम नि हिनंग को
0: मखोय तामो ना फिपम फरम लबसु आइदि काइथेना दुम थोकनि ने कैनो अबो के पफम ने पोफम से कलहोन न बहोन
1: बदने
0: वाजा रखबा मसु आइगोन द सिनबिरम नि कैनो
1: आइ सना बे नय मौ न हाने ने खैदिन थोक पछे आइ या नय पामक त्रे दाई तल्ले द
0: कैनो ने मखै ता मोन ताक पिरि बसि बो आइ हौजे कान द कैथेन थोंनरि बसि दि आइ गुंबि मौ न हांग आक्तने मि खाइन दोंनरि से खरा जुजा थोक दना मयेंग बिउदा होइ ता मो
1: हे नंग ने
0: नंगो कैथे लाइन बिगी गुल लसि सुने ओ थोंग न साउखरे नो मतंग कैथे ले का हौद बदने इसा से लैफम जाफम का खंग बजा ने मो
1: खंग ओ ए हौजे खबदने मौना हाय मांग ने रमी कोई बेमा को नोंग मदिने नंग सुने लैफम जाफम खंग दने ने ngok दुन सखे दुरे नने नंग सु
0: हाय नो मोइता मो लैन लैन कना येंग दुना ngok स तुइ नो आइबो ai khoi di sati ne sati sati dharma nga na sachari bi ni
1: sana mi nang na ma kai ma ke sem du na kai din thulu bi di sati dharma nga pa chari wa hoi re koi bi ma
0: hoi da di kai no
1: pai pai pai pai pai pai pai hau jik ti na sati sa hen bi ya na thorak pa da gi hoi ta re hai nu pa na ha sing su ne po lai ba matam da ne ma na lai ga du po da du da di ying ne tri sati gi ma ma ying ying da na lai na ba yau re o awang le kai gi इबी जादु नंग खंगदा हा आइ खै दि छती नि गान हायलम बदो नंग खंग बने त्रो इकुई कुई दना मा पुरे दु दु ओम के सिफाय मे दे चेंग के दु नंग खंग ब्रो ए मसा नि दु सु सिफाय दु पहा ओले फंग जे गरे दना नोय जे छलो
0: आ मा नि ने लान सलग नुपी खुदि म सेन था बदि यारो
1: ए
0: हौ जे ति ने नुपी गी जुग ने नुपी गी जुग भारत की प्रेसिडेंट भौबा नुपी न ओइ रिसिनी मखोय ता मोदि ने हाय नगे खुनुंगचंग दुना आदोम लैबिरो
1: आ वा खुनुंगचंग बा खुनुंग थोकपुवा फक आइ खंगदे नंग ने मपा थोन बप्पा मत्ते बिवानी हरि नंग थोकपि ल नोय जिनि आइ तांदे
0: आइगी करि इरा लैर दना ओनुपान हा गा गंगना भाइजा दे ख्वा
1: या दुसु
0: आइ हरि ने अदुइ दि आ नुपि न मपा थोन निंग द्र दिने युम से पुबिरो अदु वइर दिने मपा थोक दे दना मोय ता मो
1: नंगी वासि मरु लै न दि गांगि दा फरबरसु फत्रबसु आइसे इमिनी नि बिमे इमिनी ने
0: हजि कांगी एमे बीएस दिने सरु मपुला मने हे न तांगी बुङो तांगी नो नंग ना नों खितंग मंग बगा इसिंग थुम बका सामबासि दे पोकते सरु पुदि मचिन तोंगबा आङा माथौ एमएलए मन्त्री फात्रिगी एलाकादा इमेन हा पोलम बयाद्रो
1: सना नंग आङो दा दायरे हिता हायरे ने ना
0: हमे सेन थोक दबाम दा लैबदगी हिंग दबदि यादबनि ना आइहा कैथेन थोलखिबनि ऐसे इमा इपाना ने आसा चौजखरबा
1: माने
0: पुमनमक से लाइन चुदनबा तुमलम दाई पालौबा जिराय तांगमद लैरुबद गे ऐ पुमांग मांग खरबने पुमांग मांग
1: न आइमो त दाइरे गता हायरेबा हा यंगो ऐसे करोपति ओरपयाब मिने को मतम खरने तौछिनदुने लैबै वाने नंग ननतरा कुथि यंगलुबदा खंगौदना छेंजाओ मा पाइबे लैयेन हायखिदो नंग निछेगु निछेगु नंग हायिम नत्र अजु निछेगु मीयमदने छोनेने खुदों चाबचे अहुमले पी हायरिमनि अदो आइगिदि अमुक्त सु पीदिरबा तो सिबे सु लैदिमनेबा अहुमले पी हायरिमनि आइ पाइरे खिदुरिमनि
0: ओ मीने तोंनरिबे सिंगासे करी करी नो खानाबा मपान खरा खरा थोपे ओइबुङो करोड़पति वैरकनी करोड़पति वैरखिनी हाइदना ने लैथोपना दि छुकया हे ओइबे यारा रो
1: ए हायेंग देगिने मपान थोपा होरगे नंग युम संगबगने आंगांग छेनबदने आइ बिबुला चुरे बेमा को हायेंग देगिने आइ आइ
0: काइ नो नंग ने युम छेनबदने
1: नंग युम छेग
0: हायबगने ngai ngam dab da tobira no आंगांग ना कना छेना हौदै नो
1: ओ नंगम दरे खैदेल दो आंगांग पोरग चलो नमा नबी मयाम छु तोंनरि दो उद्रो नमी तो उद्रो भारी भारी चनै ना कैनो
0: कना कना आंगांग पोरग के थिम फमनरि
1: हप्ता गी रियाज गी नुपी फारूक अब्दुल्ला गी नुपी फतिमा बेगम होय करी हो आंगांग अमत बुने ती बे मा आंगांग चरोंग चरोंग अहु मरी या न चली दो कना गी मको पापा मनम छु ब मयाम दो
0: नंग छु पु पु
1: नंग छु
0: कना गी फतिमा बेगम नो
1: कई नंग
0: कना आंगांग दो मबुक लाम न लोय रमनी लाओ ला ओसे ला ओसे एंग चावरग बाबा दोंन ने तुमलम दाई पालौनु एमे अपतपा थबक फंगदब होइगनु
1: ए सना
0: कतन नुइनु
1: नंग मि यादगुम ब खैदुक सिख बवा दु नंग खल खल ग नांगु नंग तोंनु ने अते हायगे दि हायु नंग केनु नंग नाय गो दक कतन गान हायदु नु केनु न हा नंग ना खजेन द चखिंग द आइन तौदिबा थबक मयाम छि नमि तो उद्र नंग ब
0: मखोई तामोगी थबक खुशुबुदि आइसु खंगजैये यो लैये म तौदा पुं चात्रु चात्रु पथाबा नहायनु बिना लोइन खंगजैये बुङो
1: नुङाय गिजे द कोसना नंग जोसे हाय नुङाबो पाउम तंगेन तंगनि नंग बोन खैदो जे तलि दने
0: करि पाउनो खंगनिं नंसिं बिदक लिबो
1: नाय बि इमागे मिंगाय नै हे हे लौबा ऑल इज पेंजिन दो हायेंग एमा दे येलेनि ना हाय गि तंगनि नंग जिनेबा
0: जुग अमा लैदगा हायक्रु मना दे योम दोना फंग पेंजिन दरो
1: हो हायक्रु मना दे योम बो वरब छु हायबा मना दे योम बो वर छु मिंगों दे लौबदि सिंगे दोरि नि सिदि सिंगोय दोरि नि जे कांदे हायेंग पैसा थांजोय लैरनि लबा यांखै पिरो आइ
0: लबा यांखै पिरो छानो
1: लुपाया खै का पिरोमिग सिगदा बा मलेई तो ने ngasi pigen hai bu mon ka ning nang ji
0: ta li kaida ka ki mingon dei puri no ba mingon dei ka dei puri no ba
1: nang na mu kin char ka no lupana han to thabak ta ka ga piro di piro no lupama ya ka ta
0: ngasi zen ni su ta re hai yeng wa na sing piro
1: ai hai yeng ya din hai adu bu ngasi hai min nang kai piro di piro ni
0: ma je mi gi pisa sing bu wo ye ro ye sang ga sing dong a sa ai ni yoro amani adu na ni
1: ma gi dre nang ji ka nai sang ga no nang ai du bo ka nai sang ga no
0: ni sa ban phanama thoi i athing ba kang bu na phanama thing ni ka na de ai khoi le kai de sune yu yom pham mari manga sure na ta ri
1: ai
0: ma si bu thak bi dre ba di mo ho ju yo la roi da ba ni
1: ai lam na cha tu sharuk bu di anak pa da ho na bu ri ni na मीने हिंगना बखरा होने जब द नो यिंग छन बिरु ने नक्ष के दिन द पो युम बचली दुंगाई के काने जे मीगे पैसा दु पिरो दि पिरो से काने
0: जा के काने लौ दखे लौ बिरो से
1: पिरो ओ दि पिरो
0: से फरे अदु कने मखोई ता मो मनेंगे गोपे स्वर्गे न पी कविता के क्लिनिक तो अदु जदी तोय न स पिरु न को आइ पाम ता बनी
1: छन को पी रे लोय ने आइ नुपी न हा द काने से नि दुने हिंग ब पाम मीने ति ने कैनो न बबिता क्लिनिक तो हिदा योंद्रम ने तो क्रम ने खंबो ओय नंग ने हाइटेन चालू बगी वारम लगनी चाक तो आई हलागने थुंबीगे आई कोई रे छत चिंग लुडगा हे हना ते छत चिंग दुडगा आई ये तोबा
0: ओ हुरान मन कोक त ना पी पे होरेन हन बिरक लगने थुंबिरा नो तवर का दोई दो आई लोई खंग जरे बुवा
1: वा ना बदने कितंग छोगी छु यादी आई कोई रे मी पैसा तो छत भी थो मगा लाकी हन मत
0: ओ फरे फरे फरे लेंग भी रो पैसा लोग त मम्मी तो नंगाई रे मनी सेंग याम तांगलम नी को
1: हे नंगे गा दो आइन थोंग दे दि हाउ रोइ ने आइ थोंग के नंग लेर मोबा।

धन्यवाद लिंथोई। नमस्कार दोस्तों, खुरमचरी मैं नीथा कुंजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश. तो सुना जाए आज का पहला गीत फिल्म यस बॉस से अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में. जावेद अख्तर के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत. और दोस्तों इस गीत के लिए हमें एसएमएस किया है हाइक्रोजम मयाई लेकाई से बालिन खांगेम्बम ने.

दोस्तों अगली गीत के लिए हमें व्हाट्सएप किया है बामोन कंपु मखालेका से अतोम्बा इलांगबम इचे रेनुबला ताचो जोईचान इतेमा रेविका इचे धनेश्वरी इतेमा मेरा तोम्बी इतेमा गोमती इतेमा लाइरेन तोम्बी इने इनाखुनबी और इने इभेमल ने अब वो सुनना चाहते हैं फूलों का तारू का ये गीत फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और दोस्तों अगर आप भी अपने फरमाइशी गीत भेजना चाहते हैं तो हमें भेजिए 9863239365 पर नंबर फिर से नोट करें 9863239365 आइए सुनते हैं ये गीत

अगला गीत आप सुनेंगे जहरीला इंसान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत। इस गीत के लिए हमें SMS किया है उरीपो कंगचुप रोड से जीना, लईमा अबुंगथेन और तुतुबिनी।

दोस्तों अगला गीत है सगोलबन मोइरांग हनुबा ममांग लेकाई से श्यामा सुरंजोय अबेतून और फजबी द्वारा चुना गया। वे सुनना चाहते हैं झील के उस पार फिल्म का एक गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, फिल्म एक दूजे के लिए से अभी आपने एक बहुत ही सुंदर गाना सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। इस गीत के लिए हमें एसएमएस भेजा था इरम सिपाही से पंशांगम्बी चनु निंगुम्बम और यिनिंग हुनबी चनु निंगुम्बम। आइए अब सुना जाए अगला गीत जिसे भेजा है सगोल तोम्बा लाइश्रम मखालिकाई से सुमन सुमति सरजू विलियमसन इबोमचा प्रोमिला और वेलिना ने। ये सुनना चाहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक द्वारा गाया गया इंग्लिश बापू देसी मैम फिल्म का एक गीत। योगेश की शब्द रचना है और निखिल विनय का संगीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ट्यून करते रहें संगाई चैनल, साथ ही स्वस्थ और सुरक्षित भी रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: टूरिज्म डिप्यूटी डिरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल स्टूडियो लेंगना तोान तोान वहांग पाखुम पीबी डॉक्टर बु आकाशवाणी इम्फाल माइकई हागचरी लोना मियाम लहु सिंगू मही मर मना मसिंग थाबग मरी लेना तोान तोान वहांग थम्जरीब मोबाइल नंबर 5 6 6 8 5 6 6 2 डॉक्टर रोमिला अकोइजम डिप्यूटी डिरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल खुंगंगी थौरम लोइसिनजनबगी पुंजादुसियोरगले
1: ओहै
0: अदुना इसिलिनाव स्वाइदसुम हनेख्रसि
1: फनी फनी
0: खुंगंगी थौरम ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपु अरोइबो इनिसिलिनावना अमुक्का हन्ना
1: खुरुमजरी

0: खुंगंगी थोरम दाविरी अदरम थोरम दाविरी बसी आकाशवाणी फालगी निमिदांगी थोरम सिंगी आकाशवाणी फाल हयिंग सगोल से नुमित जून की तारीख कुन गमा आयुक पुंग तरुक मिनिट तरा ताब मतम कंगला सेनल द ताब फंबिगनी लू सिंगु की वाफम द कोबी की लैना तिलना सेराम अजित पाल मेटी ने सक मेटे से थमजरी हयिंग अयुक पुंग तरुक मिनिट तरा गमा कंगला सेनल की हयिंग अयुक पुंग तरुक मखाई ताब मतम ताब फंबिगनी द कल्चर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सैसक लोसंग सकप मतम से हयिंग अयुक पुंग तरुक मिनिट इफुग मंगा थमजरी मणिपुरी मतम से
1: Hello Khunggang live phone in program
2: Hello Khunggang live phone in program Tha khuding ge aroi ba thangja Khunggang ge thoram da sandok chaba
1: Hello Khunggang Challi ba tha sigi oina lagli ba jun ge tang kun tare thangje numit numidang pung taruk minit ni fu Khunggang ge thoram da sandok chegeni Hello Khunggang live phone in program Thamjuri bihiram mapung oiba loro ki sem saba expert oina lengsin bigadaba Dr. Songtham Robin Singh SMS agronomy KVK Imphal West
2: Miyamna studio ki telephone number
1: 9362327078 call to biraktuna thoram asibu saruk yabiyo hello khunggang
2: live phone in program
3: phangbiragani PC 8744+ PC 8744+ हाइब्रिड फौसी सा खाऊबगी दमक मणिपुर के लोमी सिंह लिसांग सेट न थारकली थाबिरगली ब लोमी सिंह वारोल मतुंगिना फौसी ग अंग प मगुंदी लोक प मानव थ्वईबी फौ आयांग लेमा प्रिया गुमबंग यान छिन रग थाबता फौथोक सु हेंगतली लोकल फौ गि महाक सु चेली कौबिरगनु हाइब्रिड फौ PC 8744+ अकंग नबी सोकनी फंगफम होइन ब्रूस Boragali, Thangal Bazar Imphal Amadi, Atai Lohidak Yon Pham Singh.
4: Indorama company ki saktiman urja hau amadi mahi marung kuni mukta season ba yaraba kg ama kg manga amadi kg tara bopp bag amadi kg tara gi bucket oina phangbigane sangam da kg tara mari gi changda makhal kuni mukki mahi marung amadi banama sing da season ba yai chara hunba amadi thabada natraka ahan ba ising chanba matamda pambi aduna mapal sarakpa amadi mahi yalakpa matamda season gane machine pambi singda machangoi ba chinja carbon phangalle mara kalhalle amadi pambi gi masama u phalle henamayo चोंगली अमदि मसा मरेंग फंदोगली पोथोक पुथोक पगी चांग हेंगलहली लैबाकते इसिंग चुपचिन बगी चांग वांगहली मरमचना इसिंग हनथन चनबयै लैबाकते याउबा लैहाउगी चांग वांगकतहली सिजिनबियु शक्तिमान ऊर्जा फंगफम इंदोरमागी डीलर सिंग
5: माइकु कापथोकपा फोगिंग तौबना डेंगी थेंगबंगमलोय
6: डेंगी हायरीबा वायरस अंथोखन बलाइना मखलासी महिग यावरबा एडिस कौबकांग मखलमन चिकपदेगी नाहली कांग मखलासी आयुक नुंगथिलगी मतमदता अयामचि ए
7: लायोंग सिंगदी अरुंगकना हौबाकोक यामनकन चिकप सरु सयांग चिकप मिटकी मनुंग थंग बसरुक त चिकप नाब फाउबा माइंगक अमदि थबाकी सरुक त लाइथोपगुमना मपाक मपाक थोकलोकपा सिनी
6: लाइनासी ओइब्र खंगदोकनाबा रिम्स अमदि जेनिम्सकी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ता ई चांगयंग तौथोकपियु
7: लाइनासी दगी गाथोकनाबा पामबैसिंगदी
6: अचोनबा फुरित फिरोल लिपियु आयुक नुंगथिलगी मतमदसु Repellent mosquito coil electric vapormate na ching basing season abiu
7: season nadra ba hundok tona thamba patra sing tire sing sapu akai ba plastic cup kokta na chingba ising tungba yaba potlam sing thamdana ba hotna si
6: pau jinjeri ba directorate of health services amadi national health mission manipur
0: akashwani phone housing nibidangi pungtarit makai tari manipuri de pau tabirasi

भारतकी इकाइको नजरबा हानेगी राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन हाइरमे चत्नबिना हैनबी ओइरे हैनबिना मुख नाट हाबेदि कल्चर ओइरे असुमना साबी छानौ ओइबिसिंगी पुंसिदसु असिमाङाइ नक्न रुबना नुंसिब ओलकपा अदुगा नुंसिबदुना मुख तोंगान तोंगान बसकलोन ओलकपदा खैगी यावरखिब मिकुप मिकुप अमा कांगमदबा थादोक पंगमद्रबा पोसकुम अखैगी अमातोइबिगी सकलोन लाकपा मपाउ तोबु तानिंगबा सक्तम तोबु उजनिंगबा लैता फंखंगदबा सकलोन कयामा नुसिबगी ओलाई सिगुलबा नुसिबगी यामलबा सकलोन सिंगी मरकता मुक्सु काइनबा हाइबा नुसिबगी सकलोन मसु लैदि मतांग सिदनि फजबा सकलोन गातना लैतिंगलंबा नुसिब कव महाकी साथीरबा मसक खोइनु उबा फंगदलिबा तबदबु काइनबा महाकिसु तोंगान तोंगान बसकलोन अमुक थोलगलिबनि मसिदनि मुख हाइनरिबा थुंगनाबा खक्तना नुसिबरा अदुगा काइनखिबा महाकतुदि नुसिखिदबरा हंगबायाबो हंगने अदुगा अमुतंग हाइजगे मसिदनि खोइगि नुसिबिगि तोंगान तोंगान बसकलोन के थुंगनाबाबु हायरो काइनबाबु हायरो लैदिबा मागि सकलोन मयाम सिदैदा खोइगि थुंगनारिबा दुखता नुसिब ओइब्रा दुगा काइनखिब महाकतुदि नुसिब कौदब्रा हाइबो वहांगसिनि अदना उंगासिगि थौरमसिगि वहांगसिगि पुखचारिबो वहांगसिगि पाउखुमसि ताबिब मयाम पुनुकि मफमदगि निजारि मिकुपसिदा अदोम अदोम फाउबिब वाखलोनदु एखैगि मोबाइल नंबर 9863102016 अमुतंगनि सिंजगे 9863102016 ता मेसेजगि खथांदा दोंगि अनिङनिङबा पुनिन्द फाउबिब वाखलोन्दु फोंदोपिरो अदुगा मियाम पुन तामिनबा याबा वाहिवाता इबिरनबा निसिंजारि अदुगा इबिरक मेसेजिंग अदु मियाम पुनमु तामिननबगि दमकता मियाम द पाथोकचनबगि खुदोंसाबा लौजगे अदना मियाम वाखन खनबिगे मनुसि इसैसि तामिनसि इसै हाना खुदोल तौजगे

एक्स पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का और हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम उन सदाबहार नगमों को लेकर आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं बहुत ही नसीक से इसे आप जानते हैं गाते हैं गुनगुनाते हैं और कई बार उस पर आप थिरकने भी लगते हैं और ये वो सदाबहार नगमे हैं जो अपने जमाने में तो मशहूर थे ही आज भी उतने ही मशहूर हैं उन्हीं नगमों में से आज हम एक बेहद खूबसूरत फिल्म सुहाग से लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारा नगमा और ये फिल्म आई थी 1979 में अपने जमाने की तो मशहूर ये फिल्म थी ही अगर आज भी इसे आप देखना चाहेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे आज के सफर में हम चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस बेहद खूबसूरत सफर पर जब मोहम्मद रफी की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत मिलकर एक ऐसा जादू रचते थे जो सीधे दिल में उतर जाया करते थे इनकी जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को ऐसे ऐसे गीत दिए जिन्होंने न सिर्फ शोहरत पाई बल्कि सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह भी बना ली तो आइए इसी फिल्म सुहाग का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। हर सिंगार जहां हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के उन फिल्मों को जिन्होंने अपने दौर में सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि एक अलग पहचान भी दिलाई। आज बात एक ऐसी ही फिल्म की जिसने रोमांच, संगीत और स्टारडम तीनों को एक साथ पर्दे पर पेश किया। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं साल 1967 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म फर्ज की। रवि कांत नागाइच के निर्देशन में बनी फर्ज अपने वक्त की एक बेहद दिलचस्प और स्टाइलिश फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में नजर आए जितेंद्र और बबीता और दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर एक ऐसा असर छोड़ा कि फिल्मी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। फर्ज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं थी बल्कि उस दौर के हिंदी सिनेमा में जासूसी अंदाज को एक नया रंग देने वाली फिल्म भी थी। इसकी कहानी में रहस्य है, खतरा है और वो सनसनी भी जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांध के रखती है। कहा जाता है कि इस फिल्म में बॉन्ड स्टाइल स्पाई ड्रामा की झलक भी दिखाई देती है, खासतौर पर एक एजेंट की मौत की तहकीकात और क्लाइमेक्स में मुख्य विलन से टकराव जैसे पहलू जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि फर्ज तेलुगु फिल्म की रिमेक थी और इसकी कामयाबी का आलम यह रहा कि आगे चलकर उसकी कहानी की रूह को आगे बढ़ाते हुए दो और फिल्में आई, 1973 में कीमत और फिर 1982 में रक्षा, जिसमें एक बार फिर जितेंद्र नजर आए। और अगर इस फिल्म के संगीत की बात हो तो फिर उसके संगीत का जिक्र भला कैसे अधूरा रह सकता है। अधूरी इसलिए नहीं रह सकती कि इस फिल्म का संगीत दिया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की और गीतों को अपने अल्फाज से सजाया था आनंद बख्शी साहब ने। इन दोनों में वो जोश भी था, वो नरमी भी और वो फिल्मी कशिश भी, जिसने फर्ज को सिर्फ एक जासूसी फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार म्यूजिकल अनुभव भी बना दिया। उस दौर में जब संगीत फिल्म की पहचान हुआ करता था, फर्ज ने अपने गीतों के सहारे दर्शकों के दिलों में एक अलग मुकाम बनाया। तो आइए उसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

अगर सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की, और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम उन नगमों को लेकर आए हैं आपके लिए जो सदाबहार हैं और हमेशा के लिए आपके दिल में बस गए हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म आए दिन बहार के से। यह फिल्म आई थी 1966 में। एक ऐसी फिल्म जिसके नाम में ही बहारों की खुशबू है, आए दिन बहार के। जी हाँ, आए दिन बहार के, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल में रौनक सी भर दे, जैसे जिंदगी की गलियों में अचानक खुशियों की दस्तक हो गई हो। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आए दिन बहार के से, जिसको लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

0: महेंद्र कपूर साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार से आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर गीत मेरे मन में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल

0: इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 3 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत का और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है जिन्हें आप बहुत ही पसंद करते हैं सुनहरा दौर यानी गोल्डन एरा ये वो दौर था जहां पर हिंदी सिनेमा ने एक अलग अपनी पहचान बनाई एक नए नए प्रयोग के साथ और नए नए विषयों पर सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाई गई जो आज तक याद रह गई और वही फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा की पहचान बनी तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से आज की फिल्म यानी आज की इस पहली पेशकश में हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे वो है फागुन साल 1958 में आई इस खूबसूरत फिल्म को विभूति मित्रा ने निर्देशित और निर्मित किया जबकि कहानी प्रणव राय ने लिखी पर्दे पर मधुबाला और भारत भूषण की जोड़ी अपनी दिलकश अदाकारी से इस अफसाने को यादगार बना देती है फिल्म में बीजन एक जमींदार का बेटा नर्तकी बनानी से मोहब्बत करता है मगर सामाजिक फासले उनके मिलन में दीवार बन जाती है अधूरी रह गई ये चाहत पुनर्जन्म के जरिए मुकम्मल होने की राह तलाशती है और ये फिल्म इस तरह से आगे बढ़ती है कमर जलालाबादी ने इस फिल्म के गीतों को लिखा है और ओपी नैयर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसका संगीत दिया है तो आइए फिल्म फागुन का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनाते हैं आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में

फागुन फिल्म का ये नगमा आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकर सुने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ और ये नगमा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से। ये फिल्म आई थी 1958 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार मधुबाला और उनके साथ थे के एन सिंह मदनपुरी ओम प्रकाश धूमल सुंदर ब्रह्मा भरद्वाज चमनपुरी निर्मल कुमार महमूद मीनू मुमताज वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है कमर जलालाबादी साहब और हसरत जयपुरी ने और इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में यह नगमा था फिल्म हावड़ा ब्रिज से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं, यानी गोल्डन एरा के उन गोल्डन गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1960 में आई के आसिफ साहब के निर्माण और निर्देशन में मुगले आजम। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और साथी कलाकारों में दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना, अजीत कुमार, मुराद जीलोबाई, विजय लक्ष्मी, एस नजीर, सुरेंद्र, जॉनी वॉकर, जलाल आगा, बेबी तबस्सुम और गोपी कृष्ण वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है नौशाद साहब ने। और बात जब नौशाद साहब की हो तो फिर उनके संगीत के क्या कहने। उनका संगीतबद्ध किया हुआ नगमा सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकंड। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप इसे बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। और ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो गोल्डन एरा की पहचान बनते हैं, सुनहरे दौर की पहचान बनते हैं। ये वो नगमे हैं जो हम सब उन्हें बार बार सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनहरे दौर के इस नगमे को और आगे बढ़ाते हैं एक बेहद खूबसूरत फिल्म आवारा के एक नगमे से। यह फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, खुद राज कपूर, नरगिस, लीला चटनीस, के एन सिंह, शशि कपूर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। हालांकि इस फिल्म में दो गीतकारों ने गीत लिखे, एक शैलेंद्र साहब और दूसरे हसरत जयपुरी साहब। पर यह नगमा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ और वो फिल्म है 1958 में आई मधुमति। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में वैजयंती माला, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर और साथ ही कलाकारों में प्राण, जयंत, रामायण तिवारी, तरुण बोस और बूडो आडवाणी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो मधुमति का संगीत 1958 का सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी फिल्म संगीत बना। इस फिल्म के लिए सलील चौधरी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला। सुहाना सफर और ये मौसम हसी मुकेश के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है और आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। उसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अगला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म से और ये फिल्म थी 1957 में आई नया दौर जिसके निर्देशक थे और निर्माता भी बी आर चोपड़ा साहब और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब वैजयंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी साथ में अजीत जीवन जॉनी वॉकर चांद उस्मानी नासिर हुसैन मनमोहन कृष्ण लीला चटनी डेजी ईरानी मूलचंद कुमकुम वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं आवाजें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है ओपी नैयर साहब ने तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

0: जी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत आज के गीत मेरे मनमीत की महफिल को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद अंजू रहेगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है।

तारों में नहाई ये रात और उस पे सरगोशी करती ये हवा. बार बार ये एहसास दिल करा रही है कि आगाज हो चुका है उस महफिल का जिसमें शिरकत होती है आपकी और महफिल सजती है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है आकाशवाणी गोल्ड, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं अंजू आपके साथ. स्वागत है आप सभी का. कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म स्वामी, और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने.

कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, हमारे जितना प्यार पाओगे तो खुद को भी भूल जाओगे।

मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। वरना तो इस जमाने में वफा ढूंढना सिर्फ एक वहम।

लोग कहते हैं मेरा महबूब चांद जैसा है, लोग कहते हैं कि मेरा महबूब चांद जैसा है, नहीं नहीं लोग तो धोखे में हैं, चांद मेरे महबूब जैसा है।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. अंजू है आपके साथ और कार्यक्रम है निशिकंधा.

0: न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं, न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं, हमने तो अपनी जिंदगी के हर लम्हे बस तुझसे ही तो महकाए हैं।
1: मैंने

और तुमसे क्या कहूं कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो, कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो। तुम चाहे जहां भी रहो, मेरा साया तुम्हारे साथ हो।

खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में, खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में कि बस उम्र भर का साथ मिल जाए तेरा इन राहों में।

कहने को तो बहुत कुछ है इस दिल में, मगर तेरी एक मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे लफ्ज कम पड़ जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय

दोस्तों, गुजरे जमाने के गीत और संगीत में जो मधुरता थी वो आज के श्रोताओं को भी बरबस अपनी ओर खींचती है और उसी को बरकरार रखते हुए हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और समय हुआ है 1:11:30। शुरुआत कर रही हूँ फिल्म मधुमति से। ये फिल्म 1958 में आई थी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

ऐसे पुराने गीतों को सुनकर यकीन बहुत अच्छा लगता है और जब आजकल की युवा पीढ़ी भी इन गीतों को सुनती है, इनके रिमिक्स सुनते हैं, तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल गीत ओरिजिनल ही होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित थी, और ये फिल्म 1951 में आई थी। इसका नाम था आवारा। राज कपूर साहब की एक खासियत ये थी कि वह अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका खुद ही निभाते थे, और सबसे मजेदार बात ये रही कि उनके ही अपने परिवार के 3 सदस्यों ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। पिता पृथ्वीराज कपूर ने जज रघुनाथ की भूमिका निभाई और सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया। और तो और पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी और राज कपूर के दादाजी दीवान विश्वनाथ कपूर ने भी एक छोटा सा रोल किया। आगे बात करूंगी इस फिल्म ने कहां-कहां सफलता पाई। पहले एक बहुत ही प्यारा गीत इसी फिल्म से।

अपने देश के अलावा ये फिल्म विदेशों में बहुत पॉपुलर हुई और कई जगह उसका गीत आज भी गाया जाता है, जिसे गाया मुकेश और लिखा शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। जी हाँ, आवारा हूँ। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई। इस फिल्म के सभी गीत बहुत मशहूर हुए। हसरत जयपुरी साहब ने भी कुछ गीत इसके लिखे। तो चलिए सुनते हैं इसका दूसरा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों बात करते हैं फिल्म अलबेला की. ये फिल्म 1951 में आई थी. ये क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है और इसका निर्देशन भगवान दादा ने किया और इसमें उन्होंने गीता बाली के साथ अभिनय भी किया है. ये फिल्म अपने यादगार गानों, एक संघर्षरत कलाकार के सपनों को साकार करने की बहुत ही दिलचस्प कहानी है. कहा जाता है कि इस फिल्म ने उस दौर में सबसे ज्यादा कमाई की थी. और जानते हैं एक जो गीत है इसका, शोला जो भड़के, ये एक ऐसी घटना बन गई थी इसकी कि जब ये गाना पर्दे पर आता था तो सिनेमा घर में दर्शक इसे बजते समय स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे. और एक बड़ी रोचक जानकारी ये है कि भगवान दादा को सेट पर पेशेवर डांसर नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने अपने स्टंटमैन और फाइटर से ही फिल्म के लिए नृत्य की कोरियोग्राफी कराई. नृत्य की इस अनोखी और मौलिक शैली ने उनकी एक अलग ही पहचान बनाई. तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और उनका साथ दिया है सी रामचंद्र ने.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे।

समय हुआ है 1:32 और 52 सेकंड कार्यक्रम है गीत सुहाने मैं हूं आपके साथ अंजू अभी जो मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूं ये फिल्म है दो बीघा जमीन जो 1953 में प्रदर्शित हुई थी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे ने और साथियों ने संगीत दिया है सरल चौधरी ने

दोस्तों बात करते हैं 1953 में आई फिल्म लड़की की। एम वी रमन द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा के एक बेहद रोमांटिक लोकप्रिय फिल्म थी और एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म ने अपने दौर में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई और दर्शकों को खूब हंसाया था। इस फिल्म में वैसे तो मुख्य रूप से हीरो थे भारत भूषण, लेकिन किशोर कुमार ने सेकेंड लीड में इतनी जबरदस्त अपनी प्रतिभा दिखाई कि सबका दिल जीत लिया। और कहा जाता है कि किशोर कुमार के अभिनय का जो शुरुआत मानी जाती है, पहली हिट फिल्म यही मानी जाती है। और दोस्तों ये फिल्म असल में दक्षिण भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म पेन की रीमेक थी। और दिलचस्प बात यह है कि तमिल मूल की जो फिल्म थी, हिंदी रीमेक में लड़की के नाम से ये फिल्म बनाई गई, तो दोनों में ही जो मुख्य अभिनेत्रियां थीं वैजयंती माला और अंजलि देवी, उन्होंने ही तमिल वर्जन में इस फिल्म में काम किया था। लेकिन तमिल वर्जन में वैजयंती माला और अंजलि देवी के ऑपोजिट थे जेमिनी गणेशन, और जबकि हिंदी में भारत भूषण और किशोर कुमार को लिया गया था। वैजयंती माला ने अपने करियर के शुरुआती दौर में इस फिल्म में रानी मेहरा के नाम की एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में उनके शास्त्रीय और आधुनिक नृत्य ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया, जिससे आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड की पहली डांसिंग सुपरस्टार बनाया। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अब बात करते हैं फिल्म दीदार की। ये फिल्म 1951 में ही प्रदर्शित हुई थी। नितिन बोस द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक फिल्म दीदार। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म जब सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई तो दर्शक इतने भावुक हो जाते थे कि वो लोग रोने लगते थे वहीं पर ही। और इस फिल्म को बार बार देखने के लिए टिकट न मिलने पर बाहर भीड़ बहुत बेकाबू हो जाती थी। कलाकारों की बात करें तो बाल कलाकारों की शुरुआत जो हुई थी, परीक्षित सहनी साहब ने दिलीप कुमार साहब के बचपन का किरदार निभाया, वहीं मशहूर होस्ट और अभिनेत्री तबस्सुम ने नरगिस के बचपन का किरदार निभाया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत आशा भोंसले और गीता दत्त की आवाज में।

अभी आपने फिल्म दीदार से गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम ने। महबूब खान साहब की एक फिल्म आई थी आन, 1952 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। ये भारत की पहली टेक्निकल फिल्म थी। दिलीप साहब, प्रेम नाथ, निम्मी, हालांकि नादिरा जी को नरगिस जी की जगह रिप्लेस किया गया था, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। हालांकि इसके रिकॉर्ड को श्री 420 ने 3 साल बाद तोड़ा।

हालांकि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, ये पहली ऐसी फिल्म थी जो कि दुनिया भर में प्रदर्शित की गई। लंदन में भी इस फिल्म का एक प्रीमियर हुआ जिसमें महबूब खान साहब और उनकी पत्नी और अभिनेत्री निम्मी ने उसको अटेंड किया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए।
1: क्या?
0: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
1: सपनों में देखा होगा
0: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

लेकिन अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनीत बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिराली जोनेन ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी

2:10 हो चुके हैं और अब हो गए हैं 2:11:03. मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू लेकर आई हूँ कार्यक्रम रात सुरमई. रहिए मेरे साथ इस घंटे और हम सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत. शुरुआत दिल तो पागल है से, जिसे गाया है उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर ने.

मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, जो मुस्कुराए वो तो जान ले जाए और जो रुलाए वो दिल में घर कर जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

बदल जाए ये दुनिया पर हम ना बदलेंगे, तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, अब तुम्हें ही चाहेंगे और उम्र भर चाहते रहेंगे।

ऐसी नजरों से न देखो कि मैं होश खो बैठूं, जो बात दिल में छुपी है वो सरेआम कह बैठूं। तुम्हारी इन आंखों में वो नशा है कि बिन पिए ही महफिल में बह

पहली बार किसी की नजरों का ऐसा असर हुआ है कि ना होश है ना जमाने की कोई खबर है। जुबां खामोश है पर दिल सब कुछ कह रहा है। ये प्यार का पहला नशा मेरी रूह में बह रहा है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगी हमराही लेकर आएंगी वंदना चुक. मुझे अनुमति दीजिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा. नमस्कार, शुभ रात्रि.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगले चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे गीत हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

दोस्तों दौर भले ही चला गया है लेकिन हमारे जहन में ये गीत आज भी जुड़े हुए हैं। ताजमहल फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और एस टी बर्मन का संगीत।

दोस्तों, जमाने की परवाह क्या करें, उसने तो कुछ ना कुछ कहना ही है, इसलिए आपके दुख सुख में जो साथ दे, आप उसी के साथ खुश रहिए और अपनों का ख्याल भी रखिए।

दोस्तों कुछ गीतों को तो लगता है कि साथ ही गुनगुनाते रहें और ये बजते रहें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब ये गीत सुनने को मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना पूर्णिमा फिल्म से। गीत को रचा था गुलजार ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत छाया फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सलील चौधरी का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और इस समय मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत।

जब आप किसी को देख लें तो वो आपकी आंखों में बस ही जाता है। घराना फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। शकील बदायूं की रचना थी और रवि का संगीत। अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

अगला गीत आप सुनेंगे वो कौन थी इस फिल्म से मनोज कुमार और हेलन पर फिल्माया गया है इस फिल्म में हेलन बहुत ही सुंदर लग रही हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ राजा मेहंदी अली खान की रचना है और मदन मोहन का संगीत

जब अपनों का साथ मिल जाता है तो इंसान यही सोचता है कि उसका दामन छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। वैसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगला गीत प्यार को बयां करते कह रहा है।

0: चोरी चोरी। इस फिल्म से भी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। शैलेंद्र की कलम से निकला गीत था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से। ये गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। सुन लेते हैं किशोर कुमार का हंसी से भरा हुआ अंदाज से ये गीत।
1: C-A-T cat, cat माने बिल्ली, R-A-T rat, rat माने चूहा, अरे दिल है तेरा।

GOAT, goat, goat माने बकरी, LION, lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

उम्मीद है आपको ये किशोर कुमार का हंसी भरा अंदाज जरूर पसंद आया होगा। और अब अगला गीत, दोस्तों जिसकी भी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा हो तो उसकी जिंदगी में भला बहारें क्यों नहीं आएंगी। तो अब सुन लेते हैं ये गीत और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं।

दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप जान जाएंगे, तो आप जान गए होंगे। ये फिल्म का नाम लिया था मैंने कि उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है, तो आए दिन बहार के इस फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। अगला गीत सूरज फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले का गाया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को अपनी बात समझा रहे होते हैं लेकिन नहीं समझ में आती, फिर आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसे अपने वक्त पर, कोई बात नहीं। जब इसे या कहते हैं ना कि जब सयाना हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा, तो इस गीत में भी ऐसा ही कुछ है।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अगले कार्यक्रम के साथ भी तो जुड़ी हुई हूँ और अब आपके लिए कुछ ही पलों बाद होंगे समाचार, आप सुनेंगे।

0: सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर के विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगला चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को वर्ष 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode.

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों के साथ एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

भाभी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। दोस्तों, पतंग की तरह ही हमारे विचार होते हैं, जो सकारात्मक हो तो ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि आप भी हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहें।

मधुमती फिल्म से ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी सलील चौधरी ने। अगला गीत झनक झनक पायल पाजी फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 200 FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और गीतों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वंदना चुग।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में आपने ये गीत सुना राम और श्याम फिल्म से। दोस्तों बहुत समय हो जाए तो आप जब अपनों से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं आप बताइए सोचकर, यही कहते हैं ना, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आपने एक गीत सुना, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। दोस्तों, जब भी अपने दोस्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना, और मौसम का अगर हाल बदल जाए तो कितना अच्छा हो, और फिर आपको उस मौसम में झूमना तो अच्छा लगेगा।

उजाला फिल्म से गीत आपने सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया हुआ। असल जयपुरी ने गीत को रचा था और संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कहना पड़ेगा कि अगर आपके विचारों का तालमेल अपनों से बैठ जाए तो जिंदगी जीने का मजा और भी दोगुना हो जाता है।

हमारे दोस्त फिल्म का नाम तो जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, गूंज उठी शहनाई फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने गीत को रचा था और धुन बनाई थी वसंत देसाई ने। अगला गीत आप सुनेंगे अमरदीप फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और चीतलकार रामचंद्र का संगीत।

ये सुदास और आशा भोंसले का गाया हुआ आपने गीत सुना छोटी सी बात फिल्म से। योगेश का गाया गीत था और सलील चौधरी का संगीत अगला गीत आपको सुनवा रहे हूँ दिल देके देखो फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और उषा खन्ना का संगीत।

दोस्तों वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है और हम उस दायरे में रहकर अगर नियम बनाकर काम करते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगला गीत कन्हैया फिल्म से मुकेश का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। शैलेंद्र ने गीत को रचा है और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

बुरा नहीं। मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का

0: संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026-2029 के लिए दृष्टिपत्र भी जारी करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The projects aimed at boosting economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination and speedy resolution of pending issues. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the representatives of various political parties, including BJP, Aam Aadmi Party and Indian National Congress, attended the meeting. It added that the CEO informed them about the main objective of the SIR. No eligible citizen is left out, while no ineligible person

दोस्तों भोर सुहानी कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए गीतों से वातावरण को महकाते हुए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आवाज तो आपने पहचान ही ली होगी, जी हाँ, मैं हूँ वंदना चुग।

सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाज में अभी आपने गीत सुना द बर्निंग ट्रेन से। साहिर लुधियानवी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। दोस्तों, जो भी हमें मिलता है उसमें उसी की ही असीम कृपा होती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन उसकी बख्शीश हमें सही राह और सुकून देती है।